0: आवाज़ें ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ें ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं। नमस्ते प्यारे सुनने वालों, आप सुन रहे रेडियो आवाज़ ताजिक का हिंदी समाचार कार्यक्रम। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आज के समाचार कार्यक्रम में आपके साथ है कार्यक्रम के संपादक लोग रामजिया और शायरा, कार्यक्रम के निदेशक अदौलत अजीज। हमें आशा है कि आप अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहेंगे और ताजिकिस्तान क्षेत्र तथा विश्व के प्रमुख और ताज़ा खबरों से अवगत होंगे। तो आइए शुरू करते हैं रेडियो आवाज़ ताजिक का हिंदी समाचार बुलेटिन। और ये है हमारे इस घंटे के मुख्य खबरें। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना पहल पर सम्मेलन आयोजित किया गया। ताजिकिस्तान में 11 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शैक्षिक फोरम संघ के बच्चे शुरू हुआ। ये और दूसरी खबरें हमारी इस समय में। 15 जून को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ताजिकिस्तान में जल क्षेत्र में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विषय पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कहा गया कि ये पहल जल संबंधी समस्याओं के समाधान में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और संस्थानों को प्रोत्साहित करेगी। प्रतिभागियों ने जोर दिया कि इमोम अली रहमों के नेतृत्व में ताजिकिस्तान वैश्विक जल एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो गया है और ये पुरस्कार देश की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को और मजबूत करेगा। 15 जून को शाहीन बच्चों का रिसर्च में CIS बच्चों का 11वीं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शैक्षिक फोरम का उद्घाटन हुआ जो 24 जून तक चलेगा। ये फोरम ताजिकिस्तान की संसद के

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल की हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

0: दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल की हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।
1: प्यारे सुनने वालों, हमारे समाचार के दूसरे भाग में आपका स्वागत है और हमारे साथ रहे और हमारे समय के मुख्य खबरें। मॉस्को में एकता 2026 मिनी फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई। तजकिस्तान और सऊदी अरब के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर चर्चा हुई। ये और दूसरी खबरें हमारे इस समय में। चलो साल के 13 जून को मॉस्को में तजकिस्तान के दूतावास के सहयोग से एकता 2026 नामक मिनी फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता ताजिक छात्रों के बीच राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित हुई। इसमें रूस के विभिन्न प्रमुख विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे ताजिक छात्रों की टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य खेल भावना, दोस्ती और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। अंत में विजेताओं को पुरस्कार और सम्मान पत्र प्रदान किए गए। तजकिस्तान और सऊदी अरब के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर चर्चा हुई। पंद्रह जून को दुशांबे में तजकिस्तान के चैम्बर ऑफ फार्मर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष फरहाद शो रहमानलीजोदा ने कंपनी एंजाज ह्यूमन रिसोर्सेज के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और तजकिस्तान सऊदी अरब संयुक्त व्यापार परिषद के सऊदी पक्ष के से अध्यक्ष मोहम्मद बिन सल्ले अल सुवेई से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों पक्षों ने जल विद्युत, मुक्त आर्थिक क्षेत्र, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, खनन उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर विचार विमर्श किया। वार्ता में बताया गया कि दोनों देशों के बीच वर्तमान व्यापारिक संबंध सभी प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन राजनीतिक संबंधों की अनुकूल स्थिति और दोनों देशों के नेतृत्व की इच्छा के कारण आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की बड़ी संभावनाएं मौजूद है। बैठक में ये भी कहा गया कि संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना और उसके बैठकें व्यापारी संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। मोहम्मद बिन सल्ले अल सुवेई ने तजकिस्तान में निवेश बढ़ाने और विभिन्न परियोजनाओं में प्रत्यक्ष सहयोग की सऊदी अरब की तत्परता व्याख्या। बिश्केक में आयोजित एक चैरिटी प्रदर्शनी में किर्गिजिस्तान का विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तजकिस्तान के दूतावास के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इस प्रदर्शनी में ताजिक दूतावास ने पारंपरिक ताजिक भोजन, व्यंजन, उपहार सामग्री और ताजिक उत्पादों द्वारा निर्मित पेय पदार्थ प्रस्तुत किए, जिन्हें आगंतुकों ने काफी रुचि के साथ देखा और सराहा। ये चैरिटी कार्यक्रम किर्गिजिस्तान के अनाथालयों के समर्थन के लिए आयोजित किया गया था और एकत्रित धन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए दिए जाएगा। तजकिस्तान का दूतावास इस प्रकार की मानवीय और चैरिटी गतिविधियों को नियमित रूप से समर्थन देता है, जिनका उद्देश्य मित्रता, आपसी समाज और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना है। प्यारे सुनने वालों, ये थे समय के ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं। नमस्ते प्यारे सुनने वालों, आप सुन रहे रेडियो आवाज़ ताजिक का हिंदी समाचार कार्यक्रम। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के समाचार कार्यक्रम में आपके साथ है कार्यक्रम के संपादक लोग रामजिया और शायरा, कार्यक्रम के निदेशक अदौलत अजीज। हमें आशा है कि आप अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहेंगे और ताजिकिस्तान क्षेत्र तथा विश्व के प्रमुख और ताज़ा खबरों से अवगत होंगे। तो आइए शुरू करते हैं रेडियो आवाज़ ताजिक का हिंदी समाचार चार बोली थी और ये है हमारे इस घंटे के मुख्य खबरें। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना पहल पर सम्मेलन आयोजित किया गया। ताजिकिस्तान में 11 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शैक्षिक फोरम संघ के बच्चे शुरू हुआ। ये और दूसरी खबरें हमारे इस समय में। 15 जून को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ताजिकिस्तान में जल क्षेत्र में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विषय पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कहा गया कि ये पहल जल संबंधी समस्याओं के समाधान में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और संस्थानों को प्रोत्साहित करेगी। प्रतिभागियों ने जोर दिया कि इमोम अली रहमों के नेतृत्व में ताजिकिस्तान वैश्विक जल एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो गया है और ये पुरस्कार देश की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को और मजबूत करेगा। 15 जून को शाहीन बच्चों का रिसर्च में CIS बच्चों का 11वीं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शैक्षिक फोरम का उद्घाटन हुआ जो 24 जून तक चलेगा। ये फोरम ताजिकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन के अध्यक्ष और महामहिम इमाली रामों के निर्देश पर तथा CIS अंतर संसदीय सभा के सचिवालय के पहल पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 30 से अधिक गतिविधियां निर्धारित है। फोरम में अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चे विभिन्न देशों के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से परिचित हो रहे हैं तथा वे बौद्धिक ओलंपियाड खेल हस्तियों से मुलाकात, मास्टर क्लास, पर्यटन ब्रह्मा, शारीरिक और खेल मैराथन तथा अन्य मित्रपूर्ण प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। फोरम 23 जून तक दुशांबे में जारी रहेगा, जहां बच्चे राजधानी के विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं और ताजिकिस्तान की संसद का दौरा करेंगे। इस फोरम का उद्देश्य सांस्कृतिक संवाद और CIS देशों के युवा प्रतिनिधियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना है। CIS बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शैक्षिक फोरम वर्ष 2013 से किर्गिजिस्तान, रूस, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस में आयोजित रहा है और सन 2026 में इसकी मेजबानी ताजिकिस्तान कर रहा है। शेख फैसल बिन कासिम अल थानी ने जो खतर व्यापार संघ के अध्यक्ष और फैसल होल्डिंग के निदेशक मंडल के प्रमुख ताजिकिस्तान राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने संग्रहालय की प्रदर्शनी, प्राचीन पुरातात्विक वस्तुओं तथा ताजिक लोगों की समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन किया। बाद में उन्होंने संग्रहालय की उच्च स्तर की व्यवस्था और प्रदर्शनी सामग्री की प्रशंसा की तथा आगंतुक पुस्तिका में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की। پیارے شروتاؤں, ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ سماچار بہا کے بعد آپ ایک مدھور گیت سنیں گے. اس کے پشچات ہماری سہیوگی شائرہ جی آپ کے لیے ایک وشیش اور روچک رپورٹ پرستت کریں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ریڈیو آواز تاجک کے کاریہ کرم کا آنند لیتے رہیے.

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

0: दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल की हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।
1: प्यारे सुनने वालों, हमारे समाचार के दूसरे भाग में आपका स्वागत है और हमारे साथ रहे और हमारे समय के मुख्य खबरें। मॉस्को में एकता 2026 मिनी फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई। तजकिस्तान और सऊदी अरब के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर चर्चा हुई। ये और दूसरी खबरें हमारे इस समय में। चलो साल के 13 जून को मॉस्को में तजकिस्तान के दूतावास के सहयोग से एकता 2026 नामक मिनी फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता ताजिक क्षेत्रों के बीच राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित हुई। इसमें रूस के विभिन्न प्रमुख विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे ताजिक छात्रों की टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य खेल भावना, दोस्ती और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। अंत में विजेताओं को पुरस्कार और सम्मान पत्र प्रदान किए गए। तजकिस्तान और सऊदी अरब के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर चर्चा हुई। पंद्रह जून को दुशांबे में तजकिस्तान के चैम्बर ऑफ फार्मर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष फरहाद शो रहमानलीजोदा ने कंपनी इंजाज ह्यूमन रिसोर्सेज के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और तजकिस्तान सऊदी अरब संयुक्त व्यापार परिषद के सऊदी पक्ष के से अध्यक्ष मोहम्मद बिन सल्ले अल सुवेई से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों पक्षों ने जल विद्युत, मुक्त आर्थिक क्षेत्र, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, खनन उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर विचार विमर्श किया। वार्ता में बताया गया कि दोनों देशों के बीच वर्तमान व्यापारिक संबंध सभी प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन राजनीतिक संबंधों की अनुकूल स्थिति और दोनों देशों के नेतृत्व की इच्छा के कारण आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की बड़ी संभावनाएं मौजूद है। बैठक में ये भी कहा गया कि संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना और उसकी बैठकें व्यापारी संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। मोहम्मद बिन सल्ले अल सुवेई ने तजकिस्तान में निवेश बढ़ाने और विभिन्न परियोजनाओं में प्रत्यक्ष सहयोग की सऊदी अरब की तत्परता व्याख्या। बिश्केक में आयोजित एक चैरिटी प्रदर्शनी में किर्गिजिस्तान का विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तजकिस्तान के दूतावास के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इस प्रदर्शनी में ताजिक दूतावास ने पारंपरिक ताजिक भोजन, व्यंजन, उपहार सामग्री और ताजिक उत्पादों द्वारा निर्मित पेय पदार्थ प्रस्तुत किए, जिन्हें आगंतुकों ने काफी रुचि के साथ देखा और सराहा। ये चैरिटी कार्यक्रम किर्गिजिस्तान के अनाथालयों के समर्थन के लिए आयोजित किया गया था और एकत्रित धन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए दिए जाएगा। तजकिस्तान का दूतावास इस प्रकार की मानवीय और चैरिटी गतिविधियों को नियमित रूप से समर्थन देता है, जिनका उद्देश्य मित्रता, आपसी समाज और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना है। प्यारे सुनने वालों, ये थे समय के ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।